haya haya haya kasene nyo ameje tagone barano tata itestai gona tano na tunamalisa tu namna hiyo haya kawe kengu ni keger sogo na tunabaso komurwa in status 74 ashe kongoi missing in bichaga go nyor chike tangit engingu ni ameje kitongan kebe number 2 ameje tagoita 75000 ni engyo ko itibi ga tapeng mut ago ake tukul nengeni duga na tagi ko tuitos akin bonus so kasene nyu para inda go ni कितने तय नाम जे ये नहीं कोनी किजे ने जी जातो हम कुन्योर की आगो इंगुनी की काजेल बु सभी न्यंगमुत कितने भाई ने किजे ने को जी जातो हम कुन्योर बोनस आगो का आगो इंजन डुगे तक तू लोगे ते आगे ताऊ पर इंडा को निंगुन नितंगुनी काले वे नुन्रा ने डुगे त नंबर टू अमून ओतक स्टार 274 Ngo nega ko ingian, magigas si status 74 ash number 2 dega esok orang jawab ini.